0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। जी सामईन, आज हमने जापान के मौसम गर्मा के मेलों यानी नत्सु मत्सुरी से हमारी महफिल को शुरू करना था, लेकिन मंगल को जनूबी जापान के कुमामोतो प्रिफेक्चर और उसके आसपास आए जलजले के बायस आज का प्रोग्राम जलजला जदगान के जिक्र से शुरू करेंगे।
2: जी, बहुत शदीद जलजला था जिसका मैग्नीट्यूड 7.1 था।
1: इस जलजले के नतीजे में कई अफराद हलाक और जख्मी भी हो गए हैं।
2: इस कुदरती आफत में हलाक होने वालों के लिए दुआगो हैं, खुदा उनके लवाहिकीन को सब्र दे और जख्मी होने वालों को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहतियाब करे,
0: आमीन। खलील साहब, वहाँ रहने वाले पाको हिंद के रहायशियों के बारे में कुछ मालूमात होंगी आपके पास?
1: जी, मुझे पता था कि आप ये ज़रूर पूछेंगी, इसलिए मैंने 30 जुलाई को वहाँ मुकीम कुछ पाकिस्तानियों से बातचीत की है, सुनना चाहेंगे?
2: जी जी ज़रूर, हम दोनों बल्कि सामईन भी सुनना चाहेंगे,
1: तो सुनिए। आप मेरे ख्याल में आप जब जज़ीरा आया उस वक्त कुमामोतो शहर में मौजूद थे, तो कुछ दे अपने तजुर्बात, अपने एहसासात हमारे साथ शेयर कीजिए। जब जज़ीरा आया उस वक्त आप कहाँ थे और आपने क्या देखा, क्या महसूस किया?
3: मैं जॉब से फ्री होके घर में आया था, सोफे पे बैठा था, वाइफ के साथ खाना खाने लगा था, तो एकदम बहुत ज्यादा इसके शॉक के साथ ना घर शेक करने लग गया था। बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेकिंग में चली गई थी, तो मैं साथ हो गया, ये जल्जला पहले तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उसकी वेव्स की वजह से,
1: अच्छा,
3: चेकिंग की वजह से। फिर किसी तरह हिम्मत करके हम बाहर निकले हैं, दरवाजा खोला है तो बाहर देखा बिल्डिंग बहुत जोर जोर से ना हिल रही थी,
1: अच्छा,
3: तो हिल रही थी तो हम भाग गए नीचे, मैं और वाइफ थे नीचे जाके, हम 5-10 मिनट वहाँ खुद को हौसला किया, हमें समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि शॉक की स्टेट थी।
1: अच्छा,
3: तो साथ हमारे जो रेजिडेंट्स रहते हैं, क्योंकि ये सारी हाउसिंग बिल्डिंग्स है ना जहाँ हम रहते हैं,
1: ठीक,
3: तो सारे रेजिडेंट जो आसपास रहने वाले हैं वो भी उसको बाहर निकल आए थे।
1: अच्छा,
3: तो बाहर निकलने के बाद सब लोग 10-15 मिनट बाहर रहे थे, उसके बाद जब 10-15 मिनट खुद को रिलैक्स करके मैं और वाइफ ऊपर कमरे में, सारा सामान गिरा पड़ा था, एक फैन था हमारा वो नीचे गिर के टूट गया था, ड्रेसिंग टेबल नीचे गिर गया था, फ्रिज खुल कर उसके अंदर से सामान बाहर

0: में मत्सरी कहलाने वाले ये मेले गर्मियों में जापान के तकरीबन हर मोहल्ले में होते हैं।
1: गर्मियों में ही क्यों, छुट्टियों की वजह से?
2: अरे नहीं, शायद सिर्फ छुट्टियों की वजह से ही नहीं, क्योंकि कई मत्सरियाँ तो साल हर साल से मनाई जा रही हैं और चंद एक तो कदीम ज़माने से ही अच्छी फसल की तमन्ना या फिर अच्छी पैदावार पर शुक्राने के लिए मनाई जाती थी।
0: तारीखी हवाला तो शायद हर मत्सरी का मुख्तलिफ होगा, लेकिन आजकल अमूमन सबकी मुश्तरक खसूसियत खाना पीना, खेल तमाशे और जापानी अंदाज का रक्स है।
2: कई दिन पहले से इन सब चीज़ों की रिहर्सल की जाती है और रक्स व मौसीकी तमाशों के साथ साथ कहीं मकई के भुट्टे और बर्फ़ के गोले फरोख्त हो रहे होते हैं, कहीं इन मत्सरियों में छोटे छोटे बच्चे निशानाबाजी की मशक करते नजर आते हैं। हमारे मोहल्ले की मत्सरी थी 26 जुलाई को, उसमें गोला गुंडा, भुने हुए भुट्टे जैसी खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल थे।
1: अरे वाह, बर्फ का गोला और भुट्टा, यानी खाने पीने की देसी चीज़ें।
0: बर्फ़ पर डाले रंग बिरंगे शरबत वाला गोला गंडा तो हर जगह एक सा है, अलबत्ता यहाँ भुट्टा ज़रा फ़र्क है।
2: वैसे बनाया तो आमतौर पे अमूमी तरीके से ही जाता है, भुट्टे पर चाट मसाला नहीं बल्कि जापानी अंदाज की मीठी सॉस होती है।
1: वसीमा साहिबा, आइंदा हफ्ते ज़रा पहले बताइएगा, हम भी आएंगे।
0: ये मत्स्य दरअसल मिल बैठने का, सजने संवरने का बहाना होता है। जापानी लोग कई हफ्तों से तैयारी कर रहे होते हैं कि मौसम गर्मा का जापानी अंदाज का लिबास युकाता पहनकर मत्सरी में जाना है।
2: ऐसे कई लड़कियां तो हनाबी यानी आतिशबाजी देखने के लिए भी खास किमोनो पहनकर जाती हैं।
1: वाह, यानी खाना पीना, आतिशबाजी और किमोनो। मुझे पता चलाना पड़ेगा कि हमारे मोहल्ले की मत्सरी कब है,
2: फिर आप भी किमोनो पहनेंगे?
1: नहीं, मुझे तो हमारे डायरेक्टर साहब कामयामा साहब ने युकाता का तोहफा भी दिया है। ये देखिए, जरा मैं आपको पहनकर भी दिखाऊं, जरा इसके बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके?
2: आपको कैसा लग रहा है, पहले आप बताइए।
1: ये तो हमारे चूहे की तरह है, लेकिन ये बहुत ठंडा हवादार है।
2: अच्छा,
0: आप पे सूट भी कर रहे हैं वैसे, आप पे
2: जच रहे हैं जनाब, जच रहे हैं।
0: अच्छा, इसका कलर आप देखिए, सुरमई कलर के ऊपर और जो इसका प्रिंट है वो ऐसा लग रहा है कि कोई आतिशबाजी हो रही है।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: और इसका जो सितारे लग रहे हैं,
0: अच्छा हमें देख के कुछ ऐसा लग रहा है। और जो इसकी बेल्ट है उसका जो नीला कलर है वो तो ऐसा इसके साथ मैच कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि खलील साहब को देख के गर्मी का मौसम याद आ रहा है।
1: ये बेल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन बांधने में तकरीबन मुझे कुछ 20 मिनट लगे।
2: कोई बात नहीं, इसलिए जल्दी पहन लीजिएगा और इसे देख के पहन के आपने जाना है आतिशबाजी और मत्सरी में जाना है।
1: जरूर, जरूर।
2: ये जापानी सकाफत का एक बेहतरीन हिस्सा है, बहुत खूबसूरत हिस्सा है। अरे, सकाफत से, जापान से मुझे जापानी जुबानदानी नामी क्विज याद आ गया।
1: जी सामीन, आइए जापानी बोलें के क्विज जापानी जुबानदानी में जापानी बोलचाल के प्रोग्राम से जापानी जुबान का एक नामुकम्मल जुमला पेश किया जाता है।
2: और जनाब, इस नामुकम्मल जुमले या इबारत में खाली छोड़ी गई जगह को पुर करके आपको मजकूरा लफ्ज लिख कर हमें रवाना करना है।
0: नामुकम्मल जुमले की तस्वीर हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu पर दीवान खाना के पेज पर पोस्ट की गई है।
2: इस पेज तक रसाई के लिए हमारे होम पेज nhk.jp/urdu को खोलें, फिर शोज ऑन डिमांड पर क्लिक करके दीवान खाना के सफ़े पर 2 अगस्त का प्रोग्राम खोलेंगे तो इस पे तो वो पहले जिलजिले के मुतासरीन की रवाना करदा तस्वीर है जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्विज के जुमले की तस्वीर आ जाएगी।
1: इसे देखकर जवाब तलाश करके हमें रवाना कीजिए। दुरुस्त जवाब देने वाले सामीन के नाम हम दीवान खाना में नश्र करेंगे।
0: मौजूदा क्विज का नंबर है 4
2: और 2 अगस्त की महफिल दीवान खाना के पेज पर दर्ज सवाल है दाई गाकु दे। इसके बाद है खाली जगह जिसे आपने पुर करना है।
0: दाई गाकु दे का मतलब है यूनिवर्सिटी में। मुकम्मल उर्दू जुमला है, यूनिवर्सिटी में जापानी पढ़ूंगा।
2: दाई गक दे के बाद की खाली जगह सामीन पुर कीजिए, जो अल्फाज मौजूद नहीं वही है आपका जवाब।
1: जवाब के लिए एक इशारा आपको दे देता हूँ, ये जुमला हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के सबक नंबर 4 में है।
0: nhk.jp/urdu पर जापानी बोलचाल के प्रोग्राम आइए जापानी बोलें के मुतल्लिका सफ़े पर क्विज का जवाब तलाश करें और अपना जवाब जापानी या उर्दू रस्म الخط या फिर रोमन हरूफ में लिख कर हमें रवाना कर दें।
2: अब इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन मैं बताती चलूं कि आइए जापानी बोलचाल का जो क्विज है वो शुरू हो चुका है।
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोन्निचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोन्निचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी मंगलवार को जापान एक बार फिर महाभूकंप की चपेट में आ गया ना?
1: हाँ वायला जी, जापान में रहते हुए हमें कई बार भूकंप के झटकों को झेलना पड़ता है, लेकिन अगर इतनी अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाए तो इसके लिए तैयारी करके रखना तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से इससे उबर पाना कठिन हो जाता है।
0: जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जब तक ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आती, तब तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भूकंप ग्रस्त इलाकों के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि अब और जानमाल का नुकसान ना हो और सभी की दिनचर्या वापस पटरी पर लौट आए।
1: जी, और अगर हमारी तरफ से कोई सहायता या योगदान हो सकता है तो हम भी मदद का हाथ आगे बढ़ाकर आपदा के शिकार लोगों का काम आए।
0: जी हाँ, और देखिए रोहिणी जी, भूकंप के बाद भारत के लोगों यानी हमारे शुभ चिंतकों ने हमें फेसबुक पर बहुत सारे संदेश भेजे हैं, तो आइए सबसे पहले उन पर ही क्यों ना एक नजर डाल ली जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अमित गुप्ता जी लिखते हैं कि अनिश्चितताओं के क्षणों में हमें याद दिलाया जाता है कि मानवता एक परिवार है। मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं कुमामोतो के हर व्यक्ति के साथ हैं। ईश्वर हर जीवन की रक्षा करे, हर दिल को आराम दे और इस कठिन समय का सामना कर रहे सभी परिवारों को शक्ति दे। आशा भय से ऊपर उठे, साहस हर चुनौती पर विजय प्राप्त करे और शांति जल्द ही लौटे। सभी के लिए सुरक्षा, उपचार और उज्जवल दिनों की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कुमामोतो जापान के साथ हैं।
1: बहुत ही बढ़िया संदेश है, बिल्कुल दिल से निकली दुआ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपकी प्रार्थना जरूर भगवान सुनेंगे। इनके अलावा किरण कुमार गोहिल, लाल बाबू पांडे, शेरा सिंह, तेग सिंह पनवर, सी के किंथोली, डेनी पॉल और सुनील सुमानी ने भी अफसोस जताया है।
0: आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए एक और श्रोता है उमेश कुमार शर्मा जी, वे लिखते हैं कि जापान चूंकि भूकंप क्षेत्र में है इसलिए यहाँ पर निरंतर इनका सामना यहाँ के निवासियों को करना पड़ता है, किंतु जापान सरकार की सतर्कता और यहाँ के निवासियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासियों के जीवन की रक्षा हो जाती है।
1: उमेश जी, आपने सही कहा कि आपदा के लिए प्रबंधन करके रखना यहाँ सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन नागरिक भी निजी स्तर पर इसके लिए तैयार तो रहते हैं। फिर भी परिस्थितियाँ कभी भी बिगड़ सकती हैं और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके सामने हमें नतमस्तक हो जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए भूकंप के ही संदर्भ में रामकुमार नीरज जी का पत्र है और लिखते हैं कि दक्षिणी जापान में आए 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने फिर प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। इतनी भीषण तीव्रता का भूकंप किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे समय में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा तुरंत सुनामी संबंधी परामर्श जारी करना और स्थिति सामान्य होने पर उसे वापस लेना, ये दर्शाता है कि जापान की चेतावनी प्रणाली कितनी तेज, वैज्ञानिक और विश्वसनीय है।
1: बिल्कुल।
0: समाचारों से ज्ञात हुआ कि गेंकाई और सेंदाई परमाणु बिजली घरों में किसी प्रकार की असामान्यता नहीं पाई गई तथा विकिरण स्तर सामान्य रहा। 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया की निगाहें जापान के परमाणु संयंत्रों पर रहती हैं। ऐसे में इस प्रकार की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी लोगों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ रामकुमार जी, जापान ने अतीत की घटनाओं से सबक लिया है और अब तुरंत ही इस प्रकार की जानकारी प्रेषित कर दी जाती है ताकि लोगों को समय रहते सलाह जारी की जा सके।
0: जी हाँ बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि भूकंप के कारण क्यूशू शिंकानसेन सहित रेल सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाना ये दर्शाता है कि जापान में मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तेज रफ्तार रेल सेवाओं को बिना किसी देरी के रोक देना यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। यही सतर्कता भविष्य में बड़े हादसों को टालने में सहायक बनती है। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है, फिर भी वहां की वैज्ञानिक तैयारी, आधुनिक तकनीक, मजबूत निर्माण मानक और नागरिकों का नियमित आपदा प्रशिक्षण उसे अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। ये समाचार हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए पहले से तैयार रहना अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की समाचार प्रस्तुति न केवल जानकारी देती है, बल्कि पाठकों में जागरूकता भी बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक देशों के हिंदी श्रोता आज भी इस सेवा पर गहरा विश्वास करते हैं।
1: राम कुमार जी, जापान में रहते हुए मुझे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपदा से निपटने का तंत्र और व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कुछ ही दिनों में काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो जाता है। पहले से आश्रय स्थलों को चिन्हित करके रखा जाता है, पानी की सप्लाई बंद होने पर पानी के टैंकर तुरंत आ जाते हैं, खान पीने का, शौचालय का, हर तरह का इंतजाम हो जाता है।
0: जी हाँ, वैसे रोहिणी जी, ऐसे समय में फेक न्यूज यानी झूठी जो खबरें हैं वो भी तो कितनी चलाई जाती है ना सोशल मीडिया पर, जो कि गलत जानकारी देती हैं, और इनका मकसद तो यही होता है कि लोगों में डर या चिंता का माहौल बन जाए। तो ऐसे में हमें ये भी तो सुनिश्चित करना होता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी हासिल करें।
1: यह बात आपने बहुत जरूरी की। शेर वाली एक खबर तो हमेशा चलती रहती है
0: जी,
1: कि चिड़ियाघर से शेर भाग गया है। अब तो लोग इस खबर को देखते ही पहचान जाते होंगे कि यह खबर झूठी है।
0: बिल्कुल, हमेशा चलाई जाती, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई भी आपदा हो, ये शेर वाली खबर तो जरूर आती है
1: जी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के पत्र भी ले लेते हैं
1: जी।
0: तो ये है SB शर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि पिछले रविवार को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम सुना। इस प्रोग्राम में हाथ से बने घरेलू पंखे पर चर्चा सुनी। जापान के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे को हम हिंदी फिल्मों में देखते आ रहे हैं, सभी सुंदर और आकर्षक लगते हैं, पर भारत में हाथ से बने घरेलू पंखों की भरमार है। हर क्षेत्र में तरह तरह के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे देखने को मिलते हैं। इन सभी सुंदर पंखों को मुख्यतः औरतें बनाती हैं। आजकल तो प्लास्टिक के हाथ के पंखों का प्रचलन बढ़ गया है।
1: SB शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के अनेक हिस्सों में तरह तरह के हाथ से बने पंखे पाए जाते हैं। उनमें उस क्षेत्र की स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल होता है, डिजाइन या आकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारत में बिजली गुल होना तो आम बात है, तो इस तरह के पंखे मुझे लगता है कि

0: सभी के घरों में होते हैं।
1: हाँ, और हमारे घरों में भी तो होते थे
0: जी।
1: और कुछ तो ऐसे होते थे ना जो 360 डिग्री घूम जाते थे,
0: बिल्कुल
1: बस घुमा घुमा कर चारों तरफ बैठे लोगों सबको पंखा चला जा सकता था ना। और वो भी क्या दिन थे ना, जब बिजली चले जाने पर बाहर आंगन में बैठकर पंखा किया करते थे। वैसे हाथ भी दुख जाता था ना पंखा करते करते।
0: आपने तो पुरानी याद ताजा करवा दी। हाँ, जापान में बिजली तो नहीं जाती, इसलिए घर के अंदर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन घर से बाहर निकलते समय लोग पंखे को अपने बैग में रख लेते हैं ताकि बस या ट्रेन का इंतजार करते समय उसका इस्तेमाल किया जाए। तो एक तरह से इस्तेमाल करने का समय और जगह भारत से अलग है।
1: हाँ, और देखिए घर के बाहर ही जरूरत पड़ती है ना यहाँ जापान में, क्योंकि गर्मियों में उमस इतनी ज्यादा होती है कि चाहे आप छाए में ही क्यों ना खड़े हो, पसीने से तर हो जाएंगे। वैसे आजकल तो बैटरी से चलने वाले पंखे भी काफी इस्तेमाल होते हैं, तो इन हाथ से बने पंखों का उपयोग भी घटता सा जा रहा है ना।
0: यह भी सच है। अब लेते हैं अगला पत्र जो लिखा है सुरेश अग्रवाल जी ने। कहते हैं, दिनांक 26 जुलाई के साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के प्रारंभ में जापान के पारंपरिक आतिशबाजी उत्सव हानाबी मात्सुरी पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। एक नियमित श्रोता होने के नाते हानाबी उत्सव के बारे में पहले भी अनेक बार सुन चुका हूँ, किंतु आपकी सजीव, सहज और प्रभावशाली प्रस्तुति हर बार विषय को एक नई ताजगी और आकर्षण के साथ सामने लाती है। यही आपकी प्रस्तुति की विशेषता है कि एक परिचित विषय भी नए अनुभव का एहसास कराते हैं। इस सुंदर एवं उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें।
1: सुरेश जी, प्रस्तुति पसंद करने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, आप इतने वर्षों से इस हिंदी सेवा से जुड़े हैं कि आपको जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी है और एक तरह से कह सकते हैं कि आप विशेषज्ञ भी हैं। तो मैं तो अब यही चाहूंगी कि आप एक बार जापान जरूर आएं।
0: बिल्कुल।
1: और इतने वर्षों से आपने जितना कुछ जापान के बारे में सुना है, देखा है, उसे यहाँ आकर स्वयं अनुभव करें। और आजकल भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपसे यहाँ टोक्यो में और हमारे स्टूडियो में मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
0: जी, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी रहेगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी हमारी।
1: चलो ठीक है, ये भी अच्छा रहा। तो अब दोस्तों, समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, हाल में संपन्न हुए फुटबॉल विश्व कप की तो काफी चर्चा रही। जापान में मैच का सीधा प्रसारण तो देर रात का होता था, आपने कोई मैच देखा क्या?
1: भाई उतनी देर रात तो देखना मुश्किल था भाई। और जापान के विश्व कप की दौड़ से निकल जाने के बाद तो मेरी रुचि बहुत ही कम हो गई। पर हाँ, कुछ मैच जो जापान में सुबह के समय प्रसारित हुए ना, तो उन्हें देखने की कोशिश की। तो वैसे आपका कैसे गुजरा ये विश्व कप का दौर?
0: हाँ, मैंने भी काफी मैच देखे और इस दौरान मुझे तो कुछ अभूतपूर्व अनुभव हुआ।
1: अच्छा, ऐसा
0: जी?
1: हुआ?
0: तो उसके बारे में बताती हूँ। तो हमारी बिटिया एक फुटबॉल क्लब का हिस्सा है, तकरीबन एक साल से क्लब के अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है। हमें यह लगता था कि अभिभावक की तरह हमारा काम उसे समय पर पहुंचाना और उसकी टीम का हौसला बढ़ाना है।
1: मतलब लगता था, मतलब तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव देखा आपने या कोई नई मुसीबत आ गई क्या आपके सामने?
0: अब इसे मुसीबत बोलूं या कुछ और, चलिए वो आप बताइएगा।
1: ठीक है,
0: तो मार्च के महीने में पता चला कि हमारे शहर के सभी फुटबॉल क्लबों के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चों के साथ साथ उनकी माओं को भी खेलना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे जापानी भाषा थोड़ी बहुत ही आती है और कभी फुटबॉल खेला भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इस सोच में पड़ गई कि अगर हिस्सा नहीं लिया तो शायद मेरी बेटी को अच्छा न लगे, बहुत ही दुविधा में थी मैं।
1: अच्छा, तो ये असमंजस तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैंने बहुत से विदेशियों से इस दुविधा के बारे में सुना है, बहुत सारे लोग ऐसे तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेने और न लेने की कश्मकश में रहते हैं।

0: और सच बताऊं तो स्कूल, ऐसे क्लब या अन्य सामूहिक आयोजनों में हिस्सा लेने का निर्णय उनके लिए ज्यादातर अच्छा ही रहता है। जिस अपनेपन से लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं उसमें भी तो मजा आता ही है ना।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की दुविधा और बाद में कुछ नया करने का प्रण हम प्रवासियों के जीवन का एक अनोखा हिस्सा है। तो थोड़े समय की कश्मकश के बाद मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की ठान ली।
0: अच्छा
1: जी, मुझे लगा कि जिस दिन प्रतियोगिता होगी उससे एक दिन पहले थोड़ी बहुत तैयारी की जाएगी और अगले दिन जाकर खेलना होगा।
0: तो क्या यही क्रम रहा अभ्यास और प्रतियोगिता का? वैसे मैं अपने अनुभव से ये तो बता सकती हूँ कि यहाँ जापान में सिर्फ एक दिन का अभ्यास तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कोई
1: जी
0: भी काम हो, छोटा बड़ा, किसी को भी अंजाम देने से पहले यहाँ के लोग इसकी तैयारी में अपना पूरा समर्पण देने में विश्वास रखते हैं।
1: यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो मार्च के शुरुआत से ही बच्चों के साथ साथ हमारा भी अभ्यास शुरू हुआ।
0: अच्छा
1: जी, सप्ताह में 2 दिन 3-3 घंटे का अभ्यास। उस क्लब से जुड़े कई लोगों ने आकर जरूरी गुर भी सिखाए, कई सारे अभ्यास मैच भी खेलने पड़े। अभ्यास के दौरान सारे बच्चे अपनी माओ को किक मारना, गोल करना, ड्रिबल करना सिखा रहे थे। यह बहुत अनूठा अनुभव था। हम माएं जो बच्चों को कई सारी चीजें सिखाते रहते हैं, अभी उनसे सीखने का मौका मिल रहा
0: ये भी खूब रही।
1: था। तो एक अभ्यास मैच हुआ बच्चों और उनकी माओ के बीच में। उसमें हमारी टीम आगे चल रही थी और हर एक गोल के बाद वही बच्चे जो कुछ देर पहले हमारे गुरु बने हुए थे रोने लग गए, नाराज होने लग गए।
0: अरे
1: देखा जाए तो बहुत ही मामूली सी बात है, पर गौर से सोचे तो हम उम्र के साथ ही समझ पाते हैं ना कि अगर हमारे शागिर्द कुछ अच्छा करें तो उसमें वाहवाही तो हमारी ही है। तो यहाँ माँ जो हमेशा अपने सुख को बच्चों के लिए त्याग करती है, उनके हाथों होने वाली हार ने सारे बच्चों को झकझोर दिया था।
0: अच्छा
1: अभ्यास सत्र खत्म होने के बाद क्लब के कोच ने इस सब को समझाया कि अभ्यास सत्र के दौरान अपने दोस्त, माँ या किसी करीबी से उम्मीद रखना कि वह आपको खुश करने के लिए खराब खेलेंगे या एक खिलाड़ी की पहचान बिल्कुल भी नहीं है और सबको इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: ये तो खेल खेल में बहुत बड़ी सीख मिल गई बच्चों को।
1: बिल्कुल
0: बच्चों और माओं के एक साथ मैदान में उतरने से सीखने की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ गईं। अच्छा अब ये बताइए कि प्रतियोगिता में हुआ क्या?
1: हाँ, तो हमारी टीम 2रे नंबर पर आई।
0: अच्छा
1: हाँ, सब लोग काफी तैयारी के साथ आए थे और हर टीम एक दूसरे का काफी हौसला बढ़ा रही थी। मैच के पहले हिस्से में माएं एक दूसरे से भिड़ती थीं और दूसरे हिस्से में बच्चे। फुटबॉल की तकनीकी जानकारी के साथ साथ आपसी तालमेल भी बहुत जरूरी रहा मैच खेलने के लिए। अभ्यास के दौरान माँ के गोल मारने से दुखी होने वाले बच्चे जोर शोर से माओ का हौसला बढ़ा रहे थे।
0: अच्छा तो ये परिवर्तन भी मैच में ही हो
1: मिल गया, देखने को मिल गया।
0: गया।
1: दर्शक दीर्घा में हर टीम के परिवार और दोस्तों की भी भीड़ थी और वो भी बहुत हौसला बढ़ा रहे थे और एक तरह से बहुत ही अद्भुत और खुशनुमा माहौल था इस प्रतियोगिता का।
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे लिए तो इसमें भाग लेकर खुद मेहनत करके सीखना बहुत ही उपयोगी भी रहा। मेरी बेटी की कितनी मेहनत जाती है हर अभ्यास सत्र में और हर मैच उसके लिए कितना मुश्किल होता है और हमारे हौसले की उसे कितनी ज्यादा जरूरत है, यह बिना भाग लिए मैं शायद ही जान पाती।
0: वो तो है।
1: हाँ, और एक और अच्छी बात हुई, नई जान पहचान भी हुई, तो उसे तो मैं सोने पे सुहागा की तरह देख रही हूँ। तो मिला जुला के यह रहा मेरा फुटबॉल विश्व कप के दौरान फुटबॉल को खेलना और समझना।
0: ये भी खूब रहा। चलिए दूसरे स्थान पर आने के लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया।
0: और देखिए जापान में चाहे स्कूल की पीटीए हो या खेल के क्लब, माता पिता की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करना बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो खुद भी पीटीए में रह चुकी हूँ तो मुझे
1: जी,
0: पता है
1: अच्छा।
0: कि इस तरह का होता है।
1: मित्रों, अगर आपने भी ऐसी ही अनोखी प्रतियोगिता कभी सुनी या देखी हो तो पत्र लिखकर हमसे जरूर साझा करें।
0: जी हाँ दोस्तों। और देखिए बातों बातों में अब समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना एक झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। आपके पत्रों की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को,
1: रोहिणी रमन को,
0: सायोनारा, नमस्कार।